0: perfect recipe for you to unwind. Musti Weekends only on Radio Musti 24/7 Live.
1: लव गुरु तुम्हारा लव का फंडा फेल हो गया, मेरी मोहब्बत का बाप खत्म खेल हो गया।
2: अरे उल्लू की तुम, तुझे नहीं मालूम, अपने सवाल का जवाब ला, कुछ मत कर, कुछ मत कर, जा जा

किसी लड़की की बाहों में झूल जा, दो चार दिन बाद उसको भूल जा। ए, और सुन,

0: this Ganesh Chaturthi bring home a bappa you simply can't take your eyes off. Vibrant colors, gorgeous ornaments, beautiful poses, mesmerizing detailing, eco-friendly and more. Har Ganpati idol apne aap mein khas. Welcome bappa for Ganesh Chaturthi or choose one to be a beautiful part of your home forever. See the magnificent collection at Jyoti Stores Ganpati Showroom, 21 Cuff Road. Come for the variety, leave with your bappa. Saturday night ka plan? Party? Concert? Ya phir bhajan jamming? जिस भजन जैमिंग मूवमेंट ने हजारों को एक साथ गाने पे मजबूर कर दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर. भजन जैमिंग विद बैक स्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची. गाएंगे वो, गाएंगे आप, और जब पूरा हॉल एक साथ गाएगा वो बनेगा द रियल बैकस्टेज सिबलिंग्स एक्सपीरियंस. 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर. नॉट योर यूजुअल सिट एंड वॉच शो, सिंग अलोंग, क्लैप अलोंग, जैम अलोंग. Bhajan jamming with backstage siblings. Tickets on Sistic. Book now.
1: It's a Masti Partner event.
0: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a Masti Bhara weekend.

0: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere, anytime.
1: Amir Khan wondered.
2: Wow, look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
1: Salman Khan wanted answers.
3: कैसे किया ये?
1: R. Madhavan said.
4: Awesome.
5: You're very good, yeah. Very well done.
1: And Boman Irani?
6: I say this with great respect. This is actually it's blown my mind.
1: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
7: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
1: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wow! One Soul Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
8: How do you know these things? Stop reading my mind.
9: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
10: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
1: कुर्सी मिर्जापुर की हो तो फैसला वोट से नहीं, गोली से होता है। कालीन भैया की हुकूमत,
9: बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
1: मुन्ना त्रिपाठी का भौकाल,
11: कालीन भैया है वो किंग ऑफ मिर्जापुर, हम हुए भोपाली के प्रिंस।
1: गुड्डू पंडित का बदला,
12: दिल वाले हैं, दिल फास्ट धड़कना चाहिए।
1: मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल एंड दिव्येंदु, रिलीजिंग 4th सितंबर, आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क सिंगापुर।

0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids activities, joy rides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
1: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून. हमने उसे कहा इश्क सूफियाना. दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया. 26 सितंबर 7 p.m. ऑनवर्ड्स CSE ऑडिटोरियम टू सेंसन रोड. टिकट $60 ऑनवर्ड्स. कॉन्टैक्ट एंड पे नाउ 8138279 0. इश्क सूफियाना, इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया.
2: Musty partner event.
0: The perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय?
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल? इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग?
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप?
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Josh.

0: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
1: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
2: कुर्सी मिर्जापुर की हो तो फैसला वोट से नहीं, गोली से होता है। कालीन भैया की हुकूमत,
0: बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
2: मुन्ना त्रिपाठी का भौकाल,
3: कालीन भैया है वो किंग ऑफ मिर्जापुर, हम हुए भोपाली के प्रिंस।
2: गुड्डू पंडित का बदला,
4: दिल वाले हैं हम, दिल फास्ट धड़कना चाहिए।
2: मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल एंड दिव्येंदु, रिलीजिंग 4th सितंबर आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू, ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क सिंगापुर। सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन जैमिंग, जिस भजन जैमिंग मूवमेंट ने हजारों को एक साथ गाने पे मजबूर कर दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैक स्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची, गाएंगे वो, गाएंगे आप, और जब पूरा हॉल एक साथ गाएगा वो बनेगा द रियल बैक स्टेज सिबलिंग्स एक्सपीरियंस। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। Not your usual sit and watch show. Sing along, clap along, jam along. Bhajan jamming with backstage siblings. Tickets on Sistic. Book now.
5: It's a Masti Partner event.
2: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a Masti Bhara weekend.

0: This Ganesh Chaturthi, bring home a bappa you simply can't take your eyes off. Vibrant colors, gorgeous ornaments, beautiful poses, mesmerizing detailing, eco-friendly and more. Har Ganpati idol apne aap mein khas. Welcome bappa for Ganesh Chaturthi or choose one to be a beautiful part of your home forever. See the magnificent collection at Jyoti Stores Ganpati Showroom, 21 Cuff Road. Come for the variety, leave with your bappa. Ganpati bappa!
1: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशन्स के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 September, 7 p.m. onwards, CSC Auditorium, Tissenson Road. Tickets $60 onwards. Contact and pay now, 81382790. Ishq Sufiana, Ishq Sufiana by Amit Dhamelia.
2: It's a Masti Partner event.

वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। तुम तगिन दिग तगिन तगिन दिग।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
2: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशन्स के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 September, 7 p.m. onwards, CSC Auditorium, Tissenson Road. Tickets $60 onwards. Contact and pay now, 8138-2790.
4: Ishq Sufiana, mera.
3: Ishq Sufiana by Amit Dhamelia.
2: It's a Masti Partner event.
0: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a Masti Bhara weekend.

0: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
1: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
2: कुर्सी मिर्जापुर की हो तो फैसला वोट से नहीं, गोली से होता है। कालीन भैया की हुकूमत।
0: बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
2: मुन्ना त्रिपाठी का भौकाल।
3: कालीन भैया है वो किंग ऑफ मिर्जापुर, हम हुए मोदी के प्रिंस।
2: गुड्डू पंडित का बदला।
4: दिल वाले हैं, दिल फास्ट धड़कना चाहिए।
2: मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल एंड दिव्येंदु। रिलीजिंग 4th सितंबर, आइन एंड वाइट एट द सिनेमाज नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क सिंगापुर। आमिर खान वंडर्ड।
5: वाओ, लुक, आई कुड हैव थॉट ऑफ एनीथिंग, दैट्स अमेजिंग।
2: सलमान खान वांटेड आंसर्स।
6: कैसे किया ये?
2: आर माधवन सेट।
7: ऑसम, यू आर वेरी गुड यार, वेरी वेल डन।
2: एंड बमन ईरानी।
8: आई से दिस विद ग्रेट रिस्पेक्ट, दिस इज एक्चुअली इट्स ब्लोन माय माइंड।
2: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
9: एनीबॉडी टॉक्स अबाउट मैजिक इन द कंट्री, आई वांट देम मैजिक सुहानी।
2: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wow! One Soul Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
10: How do you know these things? Stop reading my mind!

जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पलकों तक आया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं। थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा। आग तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है। क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है।

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन जैमिंग? जिस भजन जैमिंग मूवमेंट ने हजारों को एक साथ गाने पे मजबूर कर दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, और जब पूरा हॉल एक साथ गाएगा वो बनेगा द रियल बैकस्टेज सिबलिंग्स एक्सपीरियंस। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। Not your usual sit and watch show. Sing along, clap along, jam along. Bhajan jamming with backstage siblings. Tickets on Sistic. Book now.
1: The Masti Partner Event.
0: This Ganesh Chaturthi, bring home a bappa you simply can't take your eyes off. Vibrant colors, gorgeous ornaments, beautiful poses, mesmerizing detailing, eco-friendly and more. Har Ganpati idol apne aap mein khas. Welcome bappa for Ganesh Chaturthi or choose one to be a beautiful part of your home forever. See the magnificent collection at Jyoti Stores Ganpati Showroom, 21 Cuff Road. Come for the variety, leave with your bappa.
2: The perfect recipe for you

अब नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं समर हाजिर हूं एक बार फिर से लेकर बॉलीवुड के कलाकारों की कहानी लेजेंड्स फिर से ओनली ऑन रेडियो मसी, सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009। सिंगापुर लेजेंड्स में आज हम एक ऐसे लेजेंड की बात करने वाले हैं जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि भाई अपनी फील्ड में आगे बढ़ते हुए स्टार को हम कहते हैं कि भाई देखो कितना चमकता हुआ सितारा है, कोई भी हो, जरूरी नहीं कि फिल्म के पर्दे पर ही दिखता हो। अब जब हम आसमान में देखते हैं तो बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं, लेकिन जो ज्यादा चमकते हैं वो अलग ही नजर आ जाते हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत से फिल्म मेकर्स ऐसे हैं, लेकिन जब उन फिल्म मेकर की बात की जाती है जो एक पूरा सिनेमा दिखाते हैं, जो जिंदगी का हर एक इमोशन दिखाते हैं, तो ऐसे कुछ ही चमकदार सितारे नजर आते हैं। महबूब खान जैसे कि यश चोपड़ा, जैसे कि शक्ति सामंत, और अगर आज के डायरेक्टर्स की बात की जाए तो जो नाम सबसे पहले मेरे जहन में आता है वो है संजय लीला भंसाली।

इश्क को, मोहब्बत को अगर सिल्वर स्क्रीन पर सही ढंग से दिखा सकता है कोई आज के जमाने में, तो सिर्फ संजय लीला भंसाली दिखा सकते हैं। हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन निर्देशकों में से एक संजय लीला भंसाली, जो फिल्म डायरेक्टर के साथ साथ प्रोड्यूसर भी हैं, स्क्रीन प्ले राइटर भी हैं और एक बहुत ही कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। इनकी फिल्मी जिंदगी की आज हम बात करेंगे इसी शो में, लेकिन पहले सुनते हैं उनकी फिल्मों के कुछ खूबसूरत नगमे जो इस शो को और खूबसूरत बना देंगे। आइए सुनते हैं और रहिएगा मेरे साथ, कुछ कहना चाहें, अपनी पसंद के गाने जो संजय लीला भंसाली की फिल्मों से हो सुनना चाहें तो हमें जरूर बताइएगा हमारे फेसबुक पेज पर आकर। स्टे कनेक्टेड।

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन जैमिंग? जिस भजन जैमिंग मूवमेंट ने हजारों को एक साथ गाने पे मजबूर कर दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैक स्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, और जब पूरा हॉल एक साथ गाएगा वो बनेगा द रियल बैक स्टेज सिबलिंग्स एक्सपीरियंस। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। Not your usual sit and watch show. Sing along, clap along, jam along. Bhajan jamming with backstage siblings. Tickets on Sistic. Book now.
1: It's a Masti Partner event.
0: This Ganesh Chaturthi, bring home a bappa you simply can't take your eyes off. Vibrant colors, gorgeous ornaments, beautiful poses, mesmerizing detailing, eco-friendly and more. Har Ganpati idol apne aap mein khas. Welcome bappa for Ganesh Chaturthi or choose one to be a beautiful part of your home forever. See the magnificent collection at Jyoti Stores Ganpati Showroom, 21 Cuff Road. Come for the variety, leave with your bappa.
2: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।

रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं लेजेंड्स पर से मेरे यानी समर के साथ। आज हम आपको फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली की कहानी सुना रहे हैं। 24 फरवरी 1963 को मुंबई में इनका जन्म हुआ, जहां ये एक छोटी सी चौल में रहा करते थे। हालांकि इनके पिता एक फिल्म प्रोड्यूसर ही थे, लेकिन उनकी फिल्में चली नहीं और वो शराब की गिरफ्त में आ गए, उसके आदि हो गए। भंसाली जब अपने बचपन को याद करते हैं तो वो बताते हैं कि मेरे जैसा बचपन किसी का नहीं होना चाहिए। इनके पिता शराब के इतने आदि हो गए थे कि कोई भी प्रोड्यूसर इनसे मिलने आता था तो वो उनसे मिलने तक की हालत में नहीं होते थे। इन सब बातों और हालात ने संजय को गंभीर इंसान बना दिया। इन हालातों के चलते पैसों की कमी आ गई और ये एक छोटे से चौल में रहने लगे। इनकी एक छोटी बहन भी है और इनकी माँ, जिनका नाम है लीला भंसाली। इनके पिताजी ने इन्हें मुगल-ए-आज़म 18 बार दिखाई और कहा कि मैं ऐसी ही एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। हालांकि इनके पिताजी तो ऐसी फिल्में नहीं बना पाए, लेकिन आज जो भंसाली इतनी जबरदस्त और इतनी ग्रैंड फिल्में बनाते हैं, उनमें कहीं ना कहीं इनके पिताजी का सपना जरूर नजर आता है। मतलब एक ब्रेक का वक्त है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आप सुनते रहेगा रेडियो 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से समर के साथ।

0: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
1: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
2: कुर्सी मिर्जापुर की हो तो फैसला वोट से नहीं, गोली से होता है। कालीन भैया की हुकूमत।
0: बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
2: मुन्ना त्रिपाठी का भौकाल।
3: कालीन भैया है वो किंग ऑफ मिर्जापुर, हम हुए भोपाली के प्रिंस।
2: गुड्डू पंडित का बदला।
4: दिल वाले हैं, दिल फास्ट धड़कना चाहिए।
2: मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल एंड दिव्येंदु। रिलीजिंग 4th सितंबर आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क्स सिंगापुर। Aamir Khan wondered.
5: Wow, look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
2: Salman Khan wanted answers.
6: कैसे किया ये?
2: R. Madhavan said.
7: Awesome. You're very good, yeah. Very well done.
2: And Boman Irani?
8: I say this with great respect. This is actually it's blown my mind.
2: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
9: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
2: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wonderful escapades and epic encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
10: How do you know these things? Stop reading my mind.
11: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
12: वेलकम बैक सिंगापुर, आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से मेरे यानी समर के साथ। यह है सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र हिंदी लाइव हिंदी रेडियो स्टेशन, नाम है इसका रेडियो मस्ती। संजय लीला भंसाली का आज हम बात कर रहे हैं। संजय लीला भंसाली बचपन से ही एक्टर डायरेक्टर गुरुदत्त और राज कपूर साहब के बड़े फैन रहे हैं। इन दोनों डायरेक्टर्स का दिखाया हुआ सिनेमा इन्हें बहुत अच्छा लगता था और बचपन से ही इनकी तरह एक बड़ा फिल्म मेकर बनना चाहते थे, तो इसके लिए इन्होंने स्कूलिंग के बाद फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे ज्वाइन कर लिया और यहाँ इन्होंने एडिटिंग में डिप्लोमा किया। यहाँ से निकलने के बाद ये असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए और ये किसके असिस्टेंट बने? फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा के। इनके साथ इन्होंने दो फिल्मों में काम किया और देखा जाए तो दोनों की दोनों बेहद कमाल की हिट रहीं। पहली फिल्म थी जो 1989 में आई, परिंदा, जिसके लिए जैकी श्रॉफ को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। इसमें अनिल कपूर भी थे। संजय लीला भंसाली ने इस फिल्म में अनिल कपूर पर एक गाना भी शूट किया था। कौन सा वाला? ये

जब फिल्म में इन्हें भी क्रेडिट दिया गया तो इन्होंने अपना नाम संजय भंसाली से संजय लीला भंसाली करवा दिया। इसके बाद इन्हें इसी नाम से जाना जाता है आज तक। इसके बाद म्यूजिकल ड्रामा फिल्म 1942 अ लव स्टोरी, इसमें भी वो विधु विनोद चोपड़ा के असिस्टेंट डायरेक्टर रहे। विधु विनोद चोपड़ा एक बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई। तो विधु विनोद चोपड़ा एक फिल्म बना रहे थे गरीब, जिसमें बॉबी देओल लीड रोल में थे, और इस फिल्म के लिए उन्होंने संजय से कहा कि तुम इसे डायरेक्ट करो, लेकिन संजय ने तब मना कर दिया। तो इस फिल्म के बाद संजय विधु विनोद चोपड़ा प्रोडक्शन से अलग हो गए, यानी इसके बाद उन्होंने कभी भी विधु विनोद चोपड़ा के साथ काम नहीं किया। वेल, अभी लेते हैं फिर से एक और ब्रेक। ब्रेक के बाद आपसे होगी मुलाकात। ब्रेक में इतने बेहतरीन नगमे आपके लिए कि आप चाहेंगे कि यार थोड़ा सा लंबा ब्रेक ले लो, तो ये ब्रेक नाभी के लिए। और अगर आप अपनी पसंद के कोई गाने सुनना चाहें तो हमारे फेसबुक पेज पर आकर आपको बताना होगा। हम इंतजार करेंगे। स्टे कनेक्टेड।

0: दो यादगार एडिशन्स के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया 26 सितंबर 7 PM onwards CSE Auditorium Tessensen Road Tickets $60 onwards Contact and pay now 8138-2790 Ishq Sufiana Mera Ishq Sufiana by Amit Dhamelia
1: It's a Masti Partner event

संजय लीला भंसाली स्पेशल शो है आज। मैं समर हूँ आपके साथ रेडियो 24/7 लाइव पर, कर रहा हूँ एक बार फिर से आपका स्वागत। ब्रेक से पहले जैसे कि हमने बात की थी कि संजय लीला भंसाली ने पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट से एडिटिंग में डिप्लोमा किया, लेकिन दरअसल ये दूसरे साल में बीच में ही छोड़कर आ गए थे, पूरा कोर्स नहीं किया था। हुआ यूं कि एडिटिंग स्टूडेंट्स को एक एक डायरेक्टर मिलने वाला था जिनकी ये फिल्म एडिट करने वाले थे, तो संजय लीला भंसाली को मिले दिलीप घोष जिनकी फिल्म इन्हें एडिट करनी थी, लेकिन इन दोनों के बीच कुछ अनबन हो गई, बात बनी नहीं। दिलीप घोष ने तो मना कर दिया कि ये मेरी फिल्म एडिट नहीं करेगा, तो संजय ने प्रिंसिपल से कहा कि मुझे कोई दूसरा डायरेक्टर दे दीजिए जिसकी मैं फिल्म एडिट करूं, मैं इसकी एडिट नहीं करना चाहता। लेकिन प्रिंसिपल ने मना कर दिया कि मैंने तो तुम्हें दिलीप के साथ काम करने का मौका दिया था लेकिन तुम नहीं कर रहे हो। तो जी इसी बात पर संजय ने प्रिंसिपल के खिलाफ केस कर दिया, लेकिन वो केस हार गए, और जब केस हार गए तो उन्होंने वो इंस्टीट्यूट छोड़ दिया, या यूं कहूं कि छोड़ना पड़ा, और एडिटिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर वो मुंबई आ गए। लेकिन जब वो इंस्टीट्यूट से निकल रहे थे तो उन्होंने खुद से बड़ा वादा किया था कि जितने भी एडिटिंग के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर अभी, उन सबसे पहले मैं फिल्म बनाऊंगा, और उन्होंने ऐसा किया भी। भंसाली साहब ने इतनी जबरदस्त फिल्में बनाई हैं कि इन्हें अब तक 4 नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर के मिल चुके हैं और 10 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं। तो इन कुछ इंटरेस्टिंग बातों के साथ एक और ब्रेक ले लेते हैं, एक और ब्रेक जिसमें आप सुनेंगे भंसाली जी की फिल्मों के कुछ और बेहतरीन धमाकेदार नगमे। रेडियो 24/7 लाइव पर मैं हूं समर आपके साथ।

वेलकम बैक सिंगापुर। आप सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव। मैं सौरभ हूं आपके साथ और ये शो है लेजेंड्स फिर से, जहां आज हम बात कर रहे हैं संजय लीला भंसाली की। संजय लीला भंसाली ने अब तक 8 फिल्में डायरेक्ट की हैं और सारी की सारी हिट है, बड़ी हिट है। जब इन्होंने विधु विनोद चोपड़ा को मना कर दिया था फिल्म डायरेक्ट करने के लिए, तो इसके बाद इन्होंने सलमान खान को लेकर एक फिल्म बनाई, खामोशी द म्यूजिकल। ये फिल्म हालांकि इतनी चली नहीं, लेकिन इस फिल्म का म्यूजिक इतना जबरदस्त हिट हुआ कि जिसका कोई जवाब नहीं, हर गाना कमाल था।

क्या होता है कि फिल्म की स्टोरी में कभी कभी छोटी सी कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से वो चल नहीं पाती, लेकिन संजय लीला भंसाली ने अपनी पहली फिल्म में बता दिया था कि वो हैं क्या चीज। इसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म बनाई जो 1999 में आई। फिल्म का नाम था हम दिल दे चुके सनम।

और 99 में रिलीज हुई तमाम फिल्मों में से सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म बनी। लेकिन इस फिल्म का आइडिया संजय लीला भंसाले के दिमाग में कहां से आया, इसके बारे में हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। सो स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009, रेडियो मस्ती।

आइए, अभी का इंतजार कर रहा था मैं समर रेडियो 24/7 लाइव पर। आज महफिल है संजय लीला भंसाली की फिल्मों की, उनकी कहानी की। लेजेंड्स फिर से आप सुन रहे हैं मेरे साथ, और हम बात कर रहे थे संजय लीला भंसाली के उस शाहकार का, उस फिल्म का जिसने धमाल मचा दिया था। मैं बात करूं हम दिल दे चुके सनम की, ये आइडिया कैसे आया इस फिल्म का। एक बार संजय लीला भंसाली म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार से मिले। इस्माइल दरबार ने उन्हें अपने कुछ गाने सुनाए जो ये रिकॉर्ड कर चुके थे। उसमें गाना था हम दिल दे चुके सनम। ये गाना जैसे ही भंसाली साहब ने सुना, उन्होंने तुरंत इस्माइल से कहा कि यार इस टाइटल पर मैं एक फिल्म बनाऊंगा। एक्चुअली फिल्म की स्टोरी तो वो खुद ही लिखते हैं, लेकिन उन्हें कोई अच्छा टाइटल नहीं मिल रहा था, तो इस गाने से टाइटल मिल गया। इस गाने के बाद इस्माइल दरबार ने उन्हें दूसरा गाना सुनाया जो ऑलरेडी केके की आवाज में वो रिकॉर्ड कर चुके थे। गाना था तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही।

0: ये गाना जब वो सुन रहे थे तो भंसाली साहब का क्या हाल हुआ, ये आप सुनिए खुद इस्माइल दरबार की जुबान में।
1: तड़प तड़प के जो गाना था वो भी एज इट इज में के की आवाज में रिकॉर्ड कर चुका था। एक दिन ऐसे ही मैंने संजय को फोन करके बोला कि मैं एक गाना आपको सुनाना चाहता हूँ। तो संजय ने मुझसे कहा कि ठीक है आप आ जाइए। तो मैं फटाफट अपना कैनेटिक लेके संजय के पास गया और उनको वो गाना सुनाया। तो संजय ने मेरे ख्याल से कुछ 9 बार गाना सुना उस रोज तड़प तड़प के, और वो बहुत रोया उस रोज जब वो पलटा मेरी तरफ ना, क्योंकि उसकी पीठ थी, मैं पीछे बैठा हुआ था। जब वो पलटा तो एकदम मतलब रो रो के उसका बुरा हाल था। और उस रोज उसने कहा कि आज मेरी फिल्म कंप्लीट हो गई, अब मुझे पता है कि मुझे कहाँ इंटरवल करना है, कहाँ फिल्म को एंड करना है।
0: तो सिंगापुर इस तरह से इन दोनों गानों से भंसाली को एक तो फिल्म का टाइटल मिल गया और दूसरा उन्हें मिला कि कहाँ फिल्म का इंटरवल रखना है और कहाँ फिल्म को पूरा करना है। ये फिल्म संजय लीला भंसाली और इस्माइल दरबार दोनों के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म थी और इस फिल्म ने दोनों को कामयाबी की उस ऊंचाई पर ला खड़ा किया जहाँ हर कोई पहुँचना चाहता है।

फिर इसके बाद महज 2 साल बाद ही एक बार फिर संजय लीला भंसाली ने फिल्म बनाई जिसका नाम था देवदास। आज हम संजय लीला भंसाली को एक अच्छे फिल्म मेकर और कमाल की म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर जानते हैं, लेकिन एक और खास चीज है जिसके लिए भी जानते हैं, और वो है उनकी फिल्मों के बड़े बड़े सेट्स, लार्जर देन लाइफ सेट्स बनाते हैं वो। ऐसे सेट्स जिन्हें देखने के बाद यकीन ही नहीं आता कि कोई बनाए हुए सेट्स, इतने रियल लगते हैं वो। बड़े बड़े सेट्स का पहला नमूना देखने को मिला फिल्म देवदास में। संजय लीला भंसाली से पहले भी कई लोग देवदास बना चुके थे, और खास तौर से बिमल रॉय की देवदास जिसमें दिलीप कुमार साहब ने काम किया था, लेकिन संजय लीला भंसाली की देवदास ने भी वो मुकाम हासिल किया कि लोग बस देखते रहे।

0: This Ganesh Chaturthi, bring home a bappa you simply can't take your eyes off. Vibrant colors, gorgeous ornaments, beautiful poses, mesmerizing detailing, eco-friendly and more. Har Ganpati idol apne aap mein khas. Welcome bappa for Ganesh Chaturthi or choose one to be a beautiful part of your home forever. See the magnificent collection at Jyoti Stores Ganpati Showroom, 21 Cuff Road. Come for the variety, leave with your bappa. Ganpati bappa!
1: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशन्स के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 September, 7 p.m. onwards, CSC Auditorium, Tissenson Road. Tickets $60 onwards. Contact and pay now, 81382790. Ishq Sufiana, mera. Ishq Sufiana by Amit Dhamelia.
2: It's a Masti Partner event.
3: Aap sun rahe hain, Samar ke saath, Legends phir se.

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009, दैट इज रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव, और मैं हूं समर आपके साथ। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे देवदास की। इस फिल्म में देवदास का रोल किया था शाहरुख खान ने। शाहरुख के साथ इनकी ये पहली फिल्म थी, ऐश्वर्या के साथ ये इनकी दूसरी फिल्म थी। माधुरी और जैकी श्रॉफ भी इस फिल्म में थे, और समीर अंजान के बोल और इस्माइल दरबार की म्यूजिक ने एक बार फिर से धमाका मचा डाला।

और फिल्म में देवदास और पारो के बीच कमाल की केमिस्ट्री दिखाई है इस रोमांटिक गाने में भंसाली साहब ने। संजय लीला भंसाली की फिल्मों में न सिर्फ सेट्स महंगे होते हैं बल्कि एक्टर्स की जो कॉस्ट्यूम होती है वो भी काफी महंगी होती है, उस पर बहुत काम किया गया होता है। अब जैसे इस फिल्म में जो लहंगा माधुरी ने पहना था वो करीब 10 लाख रुपए का था उस जमाने में, यानी 2000 में 10 लाख की कीमत काफी ज्यादा थी। और वैसे भी किसी फिल्म के लिए इतने ज्यादा पैसे खर्च करना ये भी किसी पैशन से कम नहीं है जो सिर्फ संजय लीला भंसाली में है। इस फिल्म को उस दशक की टॉप 10 फिल्मों में शामिल किया गया। तो साहब एक काम करते हैं, अब एक और ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे फिल्म बाजीराव मस्तानी की, जिसको संजय लीला भंसाली ने 15 साल पहले लिख लिया था लेकिन इसे बनाया 15 साल बाद।

0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
1: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: Aamir Khan wondered,
4: wow, look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
3: Salman Khan wanted answers.
5: Kaise kiya ye?
3: R. Madhavan said,
6: awesome. You're very good, yeah. Very well done.
3: And Boman Irani?
7: I say this with great respect. This is actually, it's blown my mind.
3: Sabhi ka ek hi sawal, kaise kar leti hai Suhani Shah ye kamaal?
8: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
3: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wow! Wonderful escapades and epic encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
9: How do you know these things? Stop reading my mind.
10: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।

वेलकम बैक सिंगापुर, आप सुन रहे हैं लेजेंड्स, फिर से मेरे यानी आपके अपने समर के साथ। ब्रेक से पहले की बात को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं बात कर रहा था कि संजय लीला भंसाली ने वो फिल्म बनाई, 15 साल बाद बनाई, जो उन्होंने उसी वक्त यानी 15 साल पहले लिख ली थी विद डायलॉग्स, और इस फिल्म का नाम है बाजीराव मस्तानी। इस फिल्म का आइडिया संजय लीला भंसाली को 15 साल पहले आ गया था, लेकिन हर बार किसी वजह से वो फिल्म नहीं बना पाते थे। ज्यादातर रीजन स्टार कास्ट का होता था। वैसे ये फिल्म पहले कमाल अमरोही भी बनाना चाहते थे, लेकिन वो भी बना नहीं पाए इसे। उसके बाद मनमोहन देसाई साहब ने भी इसे ट्राई किया, वो भी बनाना चाहते थे फिल्म, लेकिन वो भी बना नहीं पाए। लेकिन फिर वो दिन आ ही गया जब ये फिल्म पर्दे पर आई और संजय लीला भंसाली की कल्पना साकार हो गई। रणवीर सिंह बने बाजीराव और दीपिका पादुकोण बनी मस्तानी। बाजीराव मस्तानी फिल्म बनाने का सपना इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के साथ पूरा हुआ।

इस फिल्म का म्यूजिक भंसाली साहब ने दिया, हर गाना लाजवाब था। रणवीर सिंह को लेकर संजय भंसाली ने 3 फिल्में बनाई हैं अभी तक, और आप देखिए हर फिल्म में एक गाना पर्टिकुलर रणवीर सिंह पर होता ही है। अब इस फिल्म में मल्हारी गाना जो है वो रणवीर सिंह पर ही पिक्चराइज्ड है।

0: जो फट लावली।
1: इस फिल्म के लिए संजय लीला भंसाली को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। डायरेक्टर संजय लीला भंसाली जब कोई फिल्म बना रहे होते हैं तो एक बड़ी ही अजीब पशुपेश में पड़ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ आता ही नहीं है, वो फिल्म बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, मतलब बहुत ही कश्मकश में, और शायद ये एंग्जाइटी की वजह से होता है, लेकिन ऐसा उनके साथ होता है। भाई ये नर्वसनेस मुझे ऐसा लगता है कि हर परफॉर्मर के साथ होती है जब वो स्टेज पर जाने लगता है या जब वो कोई नया काम शुरू करता है, ऐसा मुझे लगता है। मेरे साथ तो ये परफॉर्मेंस फोबिया है भाई साहब, मतलब होगा, बड़े लोगों के साथ होता होगा। ना, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपने आप को बड़ा कह रहा हूँ, लेकिन होता है। अब देखिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये एक सक्सेसफुल इंसान की निशानी होती है। अब इतना सब कुछ मैंने अपनी तारीफ में कह दिया है, कभी कुछ आपका मन करे तो आप भी कह दिया कीजिए हमारे फेसबुक पेज पर आकर, मैं इंतजार करूंगा। अभी फिलहाल आप ये गाने सुनिए।

0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique. Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids activities, joy rides and lucky draws. All to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
1: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
2: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
3: कुर्सी मिर्जापुर की हो तो फैसला वोट से नहीं, कोली से होता है। कालीन भैया की हुकूमत।
1: बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
3: मुन्ना त्रिपाठी का भौकाल।
4: कालीन भैया है वो किंग ऑफ मिर्जापुर, हम हुए भोपाली के प्रिंस।
3: गुड्डू पंडित का बदला।
5: दिल वाले हैं हम, दिल फास्ट धड़कना चाहिए।
3: मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल एंड दिव्येंदु। रिलीजिंग 4th सितंबर, आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क सिंगापुर।

वेलकम सिंगापुर, मैं हूँ जमर और आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती, सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009। अब हमारा ये जो शो है आज का लेजेंड्स, फिर से इसकी बात को आगे बढ़ाते हुए हम संजय लीला भंसाली से आपका तारुफ करा रहे थे, उनकी फिल्मों के बारे में आपको बता रहे थे, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि बड़े सेट्स और बड़ी कास्ट और जबरदस्त म्यूजिक, ये पहचान होती है संजय लीला भंसाली की फिल्मों की। संजय लीला भंसाली ने अभी तक सिर्फ 9 फिल्में बनाई और हम चाहते हैं कि वो बहुत सारी कमाल की फिल्में बनाए, लेकिन सिर्फ अगर 9 फिल्मों की बात की जाए तो ये सभी सुपर डुपर हिट हैं। अब जो मेरे जहन में फिल्म आ रही है उसका नाम है गोलियों की रासलीला, रामलीला। हम दिल दे चुके सनम की जगह उस वक्त भंसाली साहब यही फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन फिर ये फिल्म उन्होंने बनाई 2013 में, और जैसे कि एक परंपरा चल पड़ी है, संजय लीला भंसाली जो फिल्म बनाएंगे वो हिट होगी, ये फिल्म भी जबरदस्त हिट हो गई।

संजय लीला भंसाली कहते हैं कि वो अपने स्टार कास्ट को फ्रीडम देते हैं, यानी एक्टर्स को फ्री रखते हैं कि भैया जो चाहे जैसे चाहे इम्प्रोवाइज कर सकते हो आप। रणवीर सिंह के बारे में वो कहते हैं कि रणवीर में जैसे सुबह 6 से 9 की एनर्जी होती है, उतनी ही एनर्जी वो रात के 10 बजे भी रखते हैं। ही इज फुल ऑफ एनर्जी। तो संजय कहते हैं कि मुझे तो उसको बार बार समझाना पड़ता है कि एनर्जी को सेव करके रखा कर यार भाई, और उसको संभालने के चक्कर में मेरी एनर्जी ज्यादा वेस्ट हो जाती है। तो चलिए अभी आज की आखिरी मुलाकात बाकी है, लेजेंड फिर से मैं समर आपसे फिर मिलेगा, लेकिन उससे पहले ये गाने आपसे मिलेंगे। ये गाने आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें आकर जरूर बताइएगा। कहाँ? अरे हमारे फेसबुक पेज पर भैया, आइए सिंगापुर, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हम कौन? अरे भैया मेरा नाम तो समर है और ये अंतरा भी है हमारे साथ, मतलब होंगी आसपास, अभी दिख नहीं रही मुझे।

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: Saturday night ka plan? Party? Concert? Ya phir bhajan jamming? जिस भजन जैमिंग मूवमेंट ने हजारों को एक साथ गाने पे मजबूर कर दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, और जब पूरा हॉल एक साथ गाएगा वो बनेगा द रियल बैकस्टेज सिबलिंग्स एक्सपीरियंस। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। नॉट योर यूजुअल सिट एंड वॉच शो, सिंग अलोंग, क्लैप अलोंग, जैम अलोंग। Bhajan jamming with backstage siblings. Tickets on Sistic. Book now.
2: The Masti Partner Event.
3: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
4: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
3: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
5: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
6: जीजी
5: कृषि वाल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
6: GG Mart, your personal grocer.

बॉलीवुड की दुनिया के लाजवाब सितारों के इस बेहतरीन शो में एक बार फिर समर कर रहा है आपका स्वागत। आप सुन रहे हैं सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009 रेडियो मस्ती। आज का शो था लेजेंडरी डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के नाम। भंसाली साहब की फिल्मों को बड़े सेट्स की वजह से, ब्यूटीफुल कलर्स की वजह से, जबरदस्त सिनेमेटोग्राफी की वजह से, जबरदस्त म्यूजिक की वजह से जाना जाता है। और उनके सेट्स वाकई ऐसे होते हैं जैसे कोई महल हो असली में। अब 2018 में जो इनकी फिल्म आई थी पद्मावत, उसके बारे में हम बात ना करें तो बात अधूरी रह जाएगी। अब जाते जाते आखिरी मुलाकात है तो उसका भी जिक्र कर देते हैं। तो इस फिल्म के सेट पर, सिर्फ सेट पर 35 करोड़ रुपए खर्चे थे संजय लीला भंसाली ने। भैया इतने बजट में तो फिल्में बन जाती हैं, लेकिन भंसाली साहब का ये पैशन है और जब तक कि उनकी परमिशन ना मिल जाए सेट कंप्लीट नहीं होता। और खास बात यह कि जिस भी सेट का आखिरी सीन होता है ना, संजय लीला भंसाली उस सीन के बाद उस सेट पर अकेले बैठे रहते हैं 10-15 मिनट तक, और वहां और कोई नहीं होता और वो किसी को अलाउ नहीं करते, बस उस सेट में जी लेना चाहते हैं कुछ वक्त अपने साथ। संजय बताते हैं कि मुझे सेट से बहुत प्यार है तो मैं सेट को टूटते हुए नहीं देख सकता, इसलिए पहले निहारता हूं और फिर वहां से चला जाता हूं, उसके बाद सेट तोड़ा जाता है। इसके अलावा संजय कहते हैं कि मैं अपनी फिल्मों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। तो भैया संजय जी, आपकी फिल्मों से हम भी प्यार करते हैं, सारी दुनिया प्यार करती है, और ये प्यार यूं ही बना रहेगा। आप ऐसे ही बेहतरीन फिल्में देते रहिए। फिलहाल हमारे जाने का वक्त है, आप भी चाहे तो हमें प्यार दे सकते हैं। हमारा नाम है समर और जाते जाते हम कुछ बात कहना चाहते हैं, उसे जरा गौर से सुन लीजिएगा और इस पर अमल कीजिएगा। क्या? अरे भैया, सिंगापुर अपना ख्याल रखेगा, अपने अपनों का ख्याल रखेगा, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल रखेगा, किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाइएगा और किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर सज जाइएगा, और दुआओं में याद मुझे भी रखिएगा। हाँ, कुछ ऐसा कर जाइएगा कि लोग आपको याद रखें, और मुझे तो आपको याद करना ही है, क्योंकि मैं हूं समर। आपसे मिलूंगा यहीं पर, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन जैमिंग? जिस भजन जैमिंग मूवमेंट ने हजारों को एक साथ गाने पे मजबूर कर दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, और जब पूरा हॉल एक साथ गाएगा वो बनेगा द रियल बैकस्टेज सिबलिंग्स एक्सपीरियंस। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। Not your usual sit-and-watch show. Sing-along, clap-along, jam-along. Bhajan jamming with Backstage Siblings. Tickets on Sistic. Book now.
1: It's a Masti Partner event.
2: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
0: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 Live. Have a Masti Bhara weekend.

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून. हमने उसे कहा इश्क सूफियाना. दो यादगार एडिशन्स के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया. 26 सितंबर 7 पीएम ऑनवर्ड्स सीएससी ऑडिटोरियम टू सेंसन रोड. टिकट $60 ऑनवर्ड्स. कॉन्टैक्ट एंड पे नाउ 8138279 0. इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया.
2: It's a Masti partner event.
3: This Ganesh Chaturthi, bring home a bappa you simply can't take your eyes off. Vibrant colors, gorgeous ornaments, beautiful poses, mesmerizing detailing, eco-friendly and more. Har Ganpati idol apne aap mein khas. Welcome bappa for Ganesh Chaturthi or choose one to be a beautiful part of your home forever. See the magnificent collection at Jyoti Stores Ganpati Showroom, 21 Cuff Road. Come for the variety, leave with your bappa.

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय?
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल? इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग?
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप?
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: दिस गणेश चतुर्थी ब्रिंग होम अ बप्पा यू सिंपली कांट टेक योर आईज ऑफ। वाइब्रेंट कलर्स, गॉर्जियस ऑर्नामेंट्स, ब्यूटीफुल पोजेस, मेस्मराइजिंग डिटेलिंग, इको फ्रेंडली एंड मोर। हर गणपति आइडल अपने आप में खास। वेलकम बप्पा फॉर गणेश चतुर्थी और चूज वन टू बी अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ योर होम फॉर एवर। सी द मैग्निफिसेंट कलेक्शन एट ज्योति स्टोर्स गणपति शोरूम 21 कफ रोड। कम फॉर द वैरायटी, लीव विद योर बप्पा।
1: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना।
2: रंग रेजा।
1: दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 September, 7 p.m. onwards, CSE Auditorium, Tissenson Road. Tickets $60 onwards. Contact and pay now, 81382790.
2: Ishq Sufiana, mera.
1: Ishq Sufiana by Amit Dhamelia.
3: It's a Masti Partner event.
0: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a Masti Bhara weekend.

0: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
1: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
2: कुर्सी मिर्जापुर की हो तो फैसला वोट से नहीं, गोली से होता है। कालीन भैया की हुकूमत।
0: बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
2: मुन्ना त्रिपाठी का भौकाल।
3: कालीन भैया है वो किंग ऑफ मिर्जापुर, हम हुए भोपाली के प्रिंस।
2: गुड्डू पंडित का बदला।
4: दिल वाले हैं हम, दिल फास्ट धड़कना चाहिए।
2: मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल एंड दिव्येंदु। रिलीजिंग 4th सितंबर आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क्स सिंगापुर। सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन जैमिंग। जिस भजन जैमिंग मूवमेंट ने हजारों को एक साथ गाने पे मजबूर कर दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैक स्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, और जब पूरा हॉल एक साथ गाएगा वो बनेगा द रियल बैक स्टेज सिबलिंग्स एक्सपीरियंस। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। Not your usual sit and watch show. Sing along, clap along.

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Just

0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides, and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food, and community come together. Saturday night ka plan? Party? Concert? Ya phir bhajan jamming? जिस भजन जैमिंग मूवमेंट ने हजारों को एक साथ गाने पे मजबूर कर दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, और जब पूरा हॉल एक साथ गाएगा वो बनेगा द रियल बैकस्टेज सिबलिंग्स एक्सपीरियंस। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। नॉट योर यूजुअल सिट एंड वॉच शो, सिंग अलोंग, क्लैप अलोंग, जैम अलोंग। Bhajan jamming with backstage siblings. Tickets on Sistic. Book now.
1: It's a must-be partner event.
0: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a must-be bhara weekend.

एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में। वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
1: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
2: कुर्सी मिर्जापुर की हो तो फैसला वोट से नहीं, गोली से होता है। कालीन भैया की हुकूमत।
0: बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
2: मुन्ना त्रिपाठी का भौकाल।
3: कालीन भैया है वो किंग ऑफ मिर्जापुर, हम हुए भौकाल के प्रिंस।
2: गुड्डू पंडित का बदला।
4: दिल वाले हैं, दिल फास्ट धड़कना चाहिए।
2: मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल एंड दिव्येंदु। रिलीजिंग 4th सितंबर, आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क सिंगापुर। आमिर खान wondered.
5: Wow, look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
2: सलमान खान wanted answers.
6: कैसे किया ये?
2: आर माधवन said.
7: Awesome. You're very good, yaar. Very well done.
2: And Boman Irani?
8: I say this with great respect. This is actually it's blown my mind.
2: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
9: Anybody talks about magic in the country, I want them magic सुहानी.
2: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wow! One Soul Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
10: How do you know these things? Stop reading my mind.
2: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere, anytime.
1: Saturday night का plan? Party? Concert? या फिर भजन jamming? जिस भजन जैमिंग मूवमेंट ने हजारों को एक साथ गाने पे मजबूर कर दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, और जब पूरा हॉल एक साथ गाएगा वो बनेगा द रियल बैकस्टेज सिबलिंग्स एक्सपीरियंस। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। नॉट योर यूजुअल सिट एंड वॉच शो, सिंग अलोंग, क्लैप अलोंग, जैम अलोंग। Bhajan jamming with backstage siblings. Tickets on Sistic. Book now.
2: It's a Masti partner event.
1: This Ganesh Chaturthi, bring home a bappa you simply can't take your eyes off. Vibrant colors, gorgeous ornaments, beautiful poses, mesmerizing detailing, eco-friendly and more. Har Ganpati idol apne aap mein khas. Welcome bappa for Ganesh Chaturthi or choose one to be a beautiful part of your home forever. See the magnificent collection at Jyoti Stores Ganpati Showroom, 21 Cuff Road. Come for the variety, leave with your bappa.

0: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
1: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
2: कुर्सी मिर्जापुर की हो तो फैसला वोट से नहीं, गोली से होता है। कालीन भैया की हुकूमत।
0: बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
2: मुन्ना त्रिपाठी का भौकाल।
3: कालीन भैया है वो किंग ऑफ मिर्जापुर, हम हुए भोपाली के प्रिंस।
2: गुड्डू पंडित का बदला।
4: दिल वाले हैं, दिल फास धड़कना चाहिए।
2: मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल एंड दिव्येंदु। रिलीजिंग 4th सितंबर आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क सिंगापुर।
5: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 सितंबर 7 पीएम ऑनवर्ड्स सीएससी ऑडिटोरियम टू सेंसन रोड। टिकट $60 ऑनवर्ड्स। कॉन्टैक्ट एंड पे नाउ 8138279 0।
6: इश्क सूफियाना मेरा।
5: इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया।
7: मस्ती पार्टनर इवेंट।
8: 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20।
9: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है।
5: Time to raise the bar.
10: Ramma.
5: Musty Top 20 Bollywood Chart Busters of the Week. Full on Renuka style.
2: Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.
5: The perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Jump.

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन जैमिंग? जिस भजन जैमिंग मूवमेंट ने हजारों को एक साथ गाने पे मजबूर कर दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैक स्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, और जब पूरा हॉल एक साथ गाएगा वो बनेगा द रियल बैक स्टेज सिबलिंग्स एक्सपीरियंस। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। Not your usual sit and watch show. Sing along, clap along, jam along. Bhajan jamming with backstage siblings. Tickets on Sistic. Book now.
1: It's a Masti Partner event.
0: This Ganesh Chaturthi, bring home a bappa you simply can't take your eyes off. Vibrant colors, gorgeous ornaments, beautiful poses, mesmerizing detailing, eco-friendly and more. Har Ganpati idol apne aap mein khas. Welcome bappa for Ganesh Chaturthi or choose one to be a beautiful part of your home forever. See the magnificent collection at Jyoti Stores Ganpati Showroom, 21 Cuff Road. Come for the variety, leave with your bappa. It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a Masti Bhara weekend.

0: चुल।
1: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere, anytime.
2: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 सितंबर 7 PM ऑनवर्ड CSE ऑडिटोरियम टिसेंसन रोड। टिकट $60 ऑनवर्ड्स। कॉन्टैक्ट एंड पे नाउ 8138279 0।
3: इश्क सूफियाना,
2: इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया।
4: मस्ती पार्टनर इवेंट।
5: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
6: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
7: कुर्सी मिर्जापुर की हो तो फैसला वोट से नहीं, गोली से होता है। कालीन भैया की हुकूमत।
5: बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
7: मुन्ना त्रिपाठी का भौकाल।
8: कालीन भैया है वो किंग ऑफ मिर्जापुर, हम हुए के प्रिंस।
7: गुड्डू पंडित का बदला।
9: दिल वाले हैं, दिल फास्ट धड़कना चाहिए।
7: मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल एंड दिव्येंदु। रिलीजिंग 4th September, Island Wide at the cinemas near you. Brought to you by Vision Discs Singapore.

0: Aamir Khan wondered.
1: Wow. Look, I could have thought of anything. That's amazing.
0: Salman Khan wanted answers.
2: Kaise kiya ye?
0: R. Madhavan said.
3: Awesome.
2: You're very good, yaar. Very well done.
0: And Boman Irani?
4: I say this with great respect. This is actually, it's blown my mind.
0: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
5: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
0: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wonder Soul Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
6: How do you know these things? Stop reading my mind.
7: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
8: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
0: कुर्सी मिर्जापुर की हो तो फैसला वोट से नहीं, गोली से होता है। कालीन भैया की हुकूमत,
7: बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
0: मुन्ना त्रिपाठी का भौकाल,
9: कालीन भैया है वो किंग ऑफ मिर्जापुर, हम हुए भौकाली के प्रिंस।
0: गुड्डू पंडित का बदला,
10: दिल वाले हैं, दिल फास्ट धड़कना चाहिए।
0: मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल एंड दिव्येंदु, रिलीजिंग 4th सितंबर आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू, ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क सिंगापुर।
11: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट,
12: दे आर हैपनिंग।
0: From rocking the charts to ruling the countdown, ye hai Masti Top 20. Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, the latest and the brightest. The week's Top Chart Busters.
13: The perfect recipe for you to unwind. Masti Weekends only on Radio Masti 24/7 Live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन जैमिंग? जिस भजन जैमिंग मूवमेंट ने हजारों को एक साथ गाने पे मजबूर कर दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, और जब पूरा हॉल एक साथ गाएगा वो बनेगा द रियल बैकस्टेज सिबलिंग्स एक्सपीरियंस। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। Not your usual sit and watch show. Sing along, clap along, jam along. Bhajan jamming with backstage siblings. Tickets on Sistic. Book now.
1: It's a Masti Partner event.
2: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
3: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
2: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
3: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
4: जीजी।
3: क्रिशीवल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
4: G-Mart, your personal grocer.
3: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart योर पर्सनल ग्रोसर।
3: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
4: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
5: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
6: Perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into a Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: This Ganesh Chaturthi, bring home a bappa you simply can't take your eyes off. Vibrant colors, gorgeous ornaments, beautiful poses, mesmerizing detailing, eco-friendly and more. Har Ganpati idol apne aap mein khas. Welcome bappa for Ganesh Chaturthi or choose one to be a beautiful part of your home forever. See the magnificent collection at Jyoti Stores Ganpati Showroom, 21 Cuff Road. Come for the variety, leave with your bappa. Saturday night ka plan? Party? Concert? Ya phir bhajan jamming? जिस भजन जैमिंग मूवमेंट ने हजारों को एक साथ गाने पे मजबूर कर दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैक स्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, और जब पूरा हॉल एक साथ गाएगा वो बनेगा द रियल बैकस्टेज सिबलिंग्स एक्सपीरियंस। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। नॉट योर यूजुअल सिट एंड वॉच शो, सिंग अलोंग, क्लैप अलोंग, जैम अलोंग। Bhajan jamming with backstage siblings. Tickets on Sistic. Book now.
1: It's a Masti Partner event.
0: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a Masti Bhara weekend.

0: Aamir Khan wondered.
1: Wow. Look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
0: Salman Khan wanted answers.
2: Kaise kiya ye?
0: R. Madhavan said.
3: Awesome.
4: You're very good, yaar. Very well done.
0: And Boman Irani?
5: I say this with great respect. This is actually blown my mind.
0: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
6: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
0: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wow! Wonderful escapades and epic encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
7: How do you know these things? Stop reading my mind.
8: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
9: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
0: कुर्सी मिर्जापुर की हो तो फैसला वोट से नहीं, गोली से होता है। कालीन भैया की हुकूमत,
8: बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
0: मुन्ना त्रिपाठी का भौकाल,
10: कालीन भैया है वो किंग ऑफ मिर्जापुर, हम हुए भोपाली के प्रिंस।
0: गुड्डू पंडित का बदला,
11: दिल वाले हैं, दिल फास्ट धड़कना चाहिए।
0: मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल एंड दिव्येंदु, रिलीजिंग 4th September, आइलैंड वाइड एट द सिनेमाज नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क सिंगापुर।

0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique. Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids activities, joy rides and lucky draws. All to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
1: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून. हमने उसे कहा इश्क सूफियाना. दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया. 26 सितंबर 7 p.m. ऑनवर्ड सीएससी ऑडिटोरियम टू सेंसन रोड. टिकट $60 ऑनवर्ड्स. कॉन्टैक्ट एंड पे नाउ 8138279 0. इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया.
2: मस्ती पार्टनर इवेंट.
3: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ.
4: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
3: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ.
4: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर.
5: जीजी
4: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com. प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस. बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com.
5: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर.
6: Perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय?
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल? इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग?
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप?
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है। यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Masti Madness on Radio Masti 24/7. Josh Mera.
2: The perfect recipe for you to unwind. Masti Weekends only on Radio Masti 24/7 Live.

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 AM onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.
1: Weekend ka maza with the best of Bollywood playing only on Radio Mercy 24/7 Live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Your

0: बच्चे
1: बेस्ट पसंद है।
2: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड। मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Jump.

0: गौरव है।
1: जागो जागो जागो, सुबह हो गई, जल्दी से ले लो चाय, ठंडी हो गई।

0: जाग जा।
1: चल फोट भाग जा, मेरे पीछे क्यों पड़ा है, वो भी तो सोया पड़ा है।
0: ए, ए विलन बादशाह, ये क्या करता है?
2: अरे का, का, का, सरत करता है, देखता नहीं क्या तू?

0: तुझे, सारा दिन झगड़ा ही करे हुए क्या है?
1: अरे साला, अभी तक लड़े ला तुम लोग।
2: अरे छोटू, अरे तेरी तो
1: अपन को हाथ नहीं लगाना।

0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है।
1: तुमको लेकर
0: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
2: मुझे चांद पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बन के रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
2: रात अकेली
3: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: रात अकेली है
3: तो क्या हम तो आपके

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट
4: रात अकेली है
5: तो क्या हम तो आप

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन जैमिंग। जिस भजन जैमिंग मूवमेंट ने हजारों को एक साथ गाने पे मजबूर कर दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। Epic Encounters and Eva Events present Bhajan Jamming with backstage siblings Raghav and Prachi. गाएंगे वो, गाएंगे आप, और जब पूरा हॉल एक साथ गाएगा वो बनेगा द रियल बैकस्टेज सिब्लिंग्स एक्सपीरियंस। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। Not your usual sit and watch show. Sing along, clap along, jam along. Bhajan Jamming with Backstage Siblings. Tickets on Sistic. Book now.
2: The Radio Masti Partner Event.
0: रात अकेली है तो क्या, हम तो

यहाँ से कहाँ जाऊँ, कहाँ मैं छुप जाऊँ, ये आधा सा दिल मैं कैसे लगाऊँ, हूँ खुद से।

कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होता, जब कर लो बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अदिति मेरे शेर मेरे चीते, तुझे कुछ साल अकेला क्या छोड़ा, तूने इतना बड़ा झोल कर दिया। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते।

0: रात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है। जोश में रहो।
1: ख्वाब देख के झूठे

अरे बॉस चिल्लाएगा, अरे टाइपिस्ट हंसेगी और चपरासी गाएगा, अरे भेजा घूम जाएगा, एस्प्रिन खाएगा और फिर घर की याद आते ही सिहर सिहर रह जाएगा। 5 बजे ये बाहर आकर साड़ी के दुकान पे जाकर 4 साड़ियों को बदलवा कर रुपये को उधार करवा कर हारे हुए दुआरी जैसा बिन डुकडुकी मदारी जैसा तेरे सामने आएगा, अरे बिना बात मुस्काएगा, फिर होटल ले जाएगा।

नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

0: और लम्हा लम्हा करके ही तो हम यहाँ तक पहुंचे हैं। जी हाँ, पूरे के पूरे वीकेंड को ऐशों से भरकर, कामों से भर के, पार्टियों से भर के और बहुत सारे इवेंट्स के साथ में बिजी रहने के बाद पहुंच चुकी है रेणुका यहाँ पर रेडियो मसी 24/7 पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका एंड वेलकम टू द मॉर्निंग शो। सुबह का असली वेक अप कॉल, द मॉर्निंग शो विद रेडियो मस्ती। जानते हैं मॉर्निंग शो का इंतजार, जी हाँ, 11 मुल्कों की पुलिस करती है पुलिस ना सही, लेकिन हाँ, हमारे सुनने वाले जरूर करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्योंकि ये एक ऐसा शो होता है जो मेरी सारी की सारी टीम करने से मना करती है और बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होती है करने में, अनलेस मैं उनके हाथ पैर पढ़कर, मतलब किस किस तरह की मैं मिन्नतें करती हूँ कि प्लीज़ कर दो यार, ये वाला मैं मंडे नहीं आ पा रही हूँ। बट हाँ, क्यों ये इतना ज़्यादा मुश्किल होता है, इज़ बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ अ शो विच नीड्स अ लॉट ऑफ अपडेट्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, और मुझे बहुत ही मज़ा आता है चीज में, और आई होप आप लोग जो मेरे साथ सुबह सुबह जुड़ जाते हैं उनको भी उतना ही मजा आता है। वेल, आई वाज टोटली एंजॉयिंग आज सुबह का डिवोशनल आवर, अगर आपने उसको अच्छे से सुना है तो आई एम श्योर आप भी मदहोश हो रहे होंगे। तो बस मदहोश दिल की धड़कन, यही गाना हो जाए। It is a beautiful track indeed. And यहाँ पर रेडियो मस्ती पर, जैसे कि हमारा हमेशा का एक एक एक बंधा सा हुआ है कि भाई हम जब शुरू करते हैं मॉर्निंग शो मंडे का, तो हम एक ऐसी बेहतरीन बात करते हैं जिससे कि हमें लगता है हमारा हफ्ता बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। तो आज की वो बेहतरीन बात ये है, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। तो हमेशा सक्सेस नहीं मिलता है, कभी कभी फेलियर भी मिलता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारनी है कि हमें आगे बढ़ना है, दैट्स व्हाट मैटर्स। ठीक है, चलो गाना सुनते हैं। गुड मॉर्निंग
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन जैमिंग? जिस भजन जैमिंग मूवमेंट ने हजारों को एक साथ गाने पे मजबूर कर दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैक स्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, और जब पूरा हॉल एक साथ गाएगा वो बनेगा द रियल बैक स्टेज सिबलिंग्स एक्सपीरियंस। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। Not your usual sit and watch show. Sing along, clap along, jam along. Bhajan Jamming with Backstage Siblings. Tickets on Sistic. Book now.
1: The Masti Partner Event.
2: As the sun rises, so does hope. Begin your day with devotion, harmony and positivity with the Devotional Hour on Radio Masti 24/7. Masti Pe Bhakti, subah 6 baje se.

0: और हमारे दिल के पास कौन रहता है? सिर्फ आप, सिर्फ आप. Is that cheesy? Not really. Good morning. Serious headlines with a not so serious vibe. जी बिल्कुल serious headlines बताऊंगी, लेकिन अब बिल्कुल serious नहीं होने दूंगी. This morning radio मस्ती 24/7 पर इनोका आपके साथ है. जी हाँ, 7 दिन हो चुके हैं सितंबर के महीने को भी शुरू हुए, and I really am looking forward to आगे का हफ्ता, उसके बाद का हफ्ता, because the festivities on radio मस्ती 24/7 on मस्ती media network and of course हमारे पूरे सिंगापुर में. क्या मजा आ रहा है यार, seriously. बट फिलहाल के लिए मजे से पहले आपकी सेहत की बात हो जाए, तो एयर क्वालिटी जो है अक्रॉस सिंगापुर, इट हैज इंप्रूव्ड टू द मॉडरेट रेंज ऑन दिस वीकेंड. 3 रीजन्स ने रिकॉर्ड किया था अनहेल्दी 24-आवर पोल्यूटेंट स्टैंडर्ड्स इंडेक्स, जैसे कहते हैं हम PSI रीडिंग्स, और वो हुआ इसी वीकेंड पर भी. सो मिडनाइट संडे को, जी हाँ, सेंट्रल रीजन जो है, इट रिकॉर्डेड अ 24-आवर PSI ऑफ 91, विच वॉज डाउन फ्रॉम अ पीक ऑफ 123 एट 1 AM, ऐसा बताया नेशनल एनवायरमेंट एजेंसी ने. साथ ही में वेस्ट और ईस्ट रीजन्स जो हैं वो भी वापस पहुंचे मॉडरेट रेंज में, रिकॉर्डिंग PSI रीडिंग्स ऑफ 86 एंड 77 रिस्पेक्टिवली एट मिडनाइट. एंड 7 बजे सुबह संडे को जो रीडिंग्स मिली वो पांचों रीजन्स हैं हमारे सिंगापुर के, सभी मॉडरेट रेंज में रहा. सो वेल, देखने की बात यह है कि 102 103 पर पहुंचते ही हमें यहां पर बोल दिया गया था कि भाई अंदर रहो, अनहेल्दी बैंड शुरू हो चुका है. एब्सोल्युटली आपकी एडवाइजरीज जारी हो चुकी हैं, सो अगर आपको तबीयत अपनी सही रखनी है तो बिल्कुल अपना ध्यान रखें. आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ सिंगापुर, राइट? बात अभी बढ़नी नहीं चाहिए, बात बढ़ने से पहले ही हम तक पहुंच जानी चाहिए ताकि हम उसको रोक सके. धुरंधर के साउंड ट्रैक से बढ़ते हैं, बढ़ाते हैं यहाँ पर टेम्पो, एंड ऑफ कोर्स आपको जगाते हैं फॉर अ ब्यूटीफुल मंडे अहेड. Good morning, everyone.
1: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.

0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है।
1: तुमको लेकर
0: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
2: मुझे चांद पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
2: रात अकेले ही।
3: जोश में रहो।
4: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशन्स के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 सितंबर 7 PM ऑनवर्ड CSE ऑडिटोरियम टू सेंसन रोड। टिकट $60 ऑनवर्ड्स। कॉन्टैक्ट एंड पे नाउ 8138279 0।
5: इश्क सूफियाना
4: बाय अमित धमेलिया।
6: It's a must-be partner event.

0: Good morning on the morning show, Renuka with you. Rescuers in Nepal, they pulled a Chinese national alive this weekend from a tunnel buried by debris. Emergency response teams, they dug with new vigor in the search of missing people 10 days after the catastrophic flooding. Serious headlines with a not-so-serious vibe, only on The Morning Show on Radio Masti. Rescue joint team jo hai, comprising personnel from the Nepal Army and foreign experts. Unhone rescue kiya ek aadmi ko 225 meter inside the tunnel of the Upper Trishuli 1 hydropower project in Rasuwa district. Ek military statement se ye baat pata lagi hai. और इस पिक्चर को ऑफ कोर्स रेस्क्यू की जो पिक्चर है विद द आर्मीज फेसबुक पेज, वहां पर दिखाया गया उस आदमी को आइडेंटिफाइड ओनली एज लू हाई टाओ विद हिज आर्म्स अराउंड द शोल्डर्स ऑफ टू कैमोफ्लाज क्लैड रेस्क्यूअर्स. काफी अलर्ट दिख रहे थे और उनके जो हाथ थे वो बिल्कुल कवर्ड थे इन थिक स्लाइमी मड. उनकी हेल्थ को असेस किया जा रहा था और फर्दर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी कंटिन्यू किए गए हैं. साथ ही साथ में ये सर्वाइवर है अमंग्स द हंड्रेड्स ऑफ हाइड्रो पावर वर्कर्स जो कि मिसिंग रिपोर्ट किए गए थे सिंस अ सुनामी लाइक वॉल ऑफ वाटर एंड मड स्वेप्ट थ्रू द चाइना नेपाल बॉर्डर फॉलोइंग अ वास्ट ग्लेशियल एंड रॉक कोलैप्स व्हिच हैपेंड ऑन अगस्त 26th. एज वी नो, दो नेपाली हाइड्रो पावर वर्कर्स को रेस्क्यू किया गया फ्राइडे को एट द त्रिशूली 3A टनल, जहां पर सर्च कंटिन्यू हो रही है अलॉन्ग साइड मल्टीपल अदर साइट्स विद एटलीस्ट 12 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स डिस्ट्रॉयड बाय द फ्लड्स. अभी तक 1,344 bodies, 1,344 bodies have been recovered in Nepal, according to the National Disaster Agency, with around 5,000 people reportedly missing. देखने की बात यह है कि आज भी होप है कि 10-10 दिनों के बाद भी कोई ना कोई रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है फ्रॉम द डेब्री. सो लेट्स होप देर आर मोर एंड मोर पीपल हु वी कैन रेस्क्यू एंड आर रेस्क्यू एंड आर प्रेयर्स ऑफ कोर्स रीच them and the army that is really amazingly working very hard to rescue people is more and more successful.
1: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere anytime.
2: This Ganesh Chaturthi, bring home a bappa you simply can't take your eyes off. Vibrant colors, gorgeous ornaments, beautiful poses, mesmerizing detailing, eco-friendly and more. Har Ganpati idol apne aap mein khas. Welcome bappa for Ganesh Chaturthi or choose one to be a beautiful part of your home forever. See the magnificent collection at Jyoti Stores Ganpati Showroom, 21 Cuff Road. Come for the variety, leave with your bappa.

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है। यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।

0: ऑलराइट एंड राइट नाउ, जैसे कि आप जानते हैं हमारे मॉर्निंग शो पर एक एक बॉलीवुड की खबर हर घंटे मिलती है आपको। मिर्जापुर की बात कर लेते हैं, मिर्जापुर द फिल्म, जी हाँ उसी की बात करने वाली हूँ मैं इस समय। मंडे कॉफी का बेस्ट पार्टनर द मॉर्निंग शो ऑन रेडियो मस्ती 24/7 न्यूज Views and a pinch. Must. अरे भाई मिर्जापुर सटल ना नेवर, दैट्स नेवर द वाइब। और बॉक्स ऑफिस ने तो अच्छे से नोट कर लिया है इस चीज को। Well, 24.75 crores की ओपनिंग, एंड ये जो गैंगस्टर सागा है फुल ऑन कालीन भैया के मोड में गया। सैटरडे को 31 करोड़ रुपीज और ऐड किए गए इन द किटी। दो ही दिन में पंकज त्रिपाठी और अली फजल की जो ये बड़ी स्क्रीन की आउटिंग है, इट हैज परफॉर्म्ड पास द 56 करोड़ मार्क, और अभी कल के नंबर्स तो आए नहीं है। Well, मिर्जापुर द मूवी क्लियरली डिड नॉट कम टू थिएटर्स टू प्ले नाइस। पंकज त्रिपाठी और अली फजल इनकी जो ओपनिंग थी कमाल की, उसके बाद मैसिव पॉपुलैरिटी ऑफ द मिर्जापुर फ्रेंचाइज की वजह से फिल्म इवन मैनेज टू बीट द ओपनिंग डे कलेक्शंस ऑफ सैयारा एंड अवारापन। और सैटरडे को वेल इट्स ओनली टर्न्ड अप द हीट गाइस, अनदर 31 क्रोर्स एज अ सेड, एंड द हिंदी वर्जन इज डूइंग द हेवी लिफ्टिंग विद 30.75 क्रोर्स। तेलुगु डब्ड वर्जन मीनवाइल कंट्रीब्यूटेड 0.25 क्रोर्स एंड जस्ट दो दिन इन द थिएटर्स, और ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ भारत में 68-69 क्रोर्स और नेट कलेक्शन 57 क्रोर्स। अब भाई पता कुछ ऐसा लगा है कि रिव्यू तो 3 स्टार मिला है आउट ऑफ 5, ओवरऑल यू वॉक आउट फीलिंग इट वॉज डिसेंट टाइम एट द फिल्म्स फॉर अ फैन। इस तरह के रिव्यूज आ रहे हैं, क्लियरली कैरीड लार्जली बाय नॉस्टैल्जिया एंड द कंफर्ट ऑफ द कैरेक्टर्स। कुछ लोगों का ये कहना है जिनसे मैं मिली हूँ कि भाई हम आराम से लंबा सीजन देखना चाहते हैं, एक फिल्म हमारी जो प्यास है उसको बुझा नहीं पाती है। सो वेल दे आर एंजॉइंग इट बट दे स्टिल प्रेफर टू वॉच इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन ऑन द OTT। वेल इसमें ऑफकोर्स आप देखेंगे कालीन भैया को, साथ में गुड्डू भैया भी हैं, और साथ में मुन्ना जो त्रिपाठी बने हैं, और जितेंद्र कुमार जो आए हैं इस समय विनय बबलू पंडित बनकर। विक्रांत मासी इज ऑफकोर्स रिप्लेस्ड बाय जितेंद्र कुमार, एंड रवि किशन इज प्लेइंग बब्बन यादव, और अभिषेक बैनर्जी सुबोध एलियस कंपाउंडर बने हुए हैं। रसिका दुग्गल इज देयर एंड श्वेता त्रिपाठी भी हैं, और साथ ही साथ में श्रिया पिलगांवकर और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे कमाल के एक्टर्स। तो विल आई विल स्टिल से कि एक बार तो देख ही आओ यार जाकर मिर्जापुर द मूवी। जॉली एलबी के साउंडट्रैक से वाला गाना सुनते साथ साथ मिलती हूँ आपको बहुत ही जल्द। गुड मॉर्निंग,
1: we are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere anytime.

0: ऐसा पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है, मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
2: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026, be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique, showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available, book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.

0: your passport to the world every Monday morning, from global headlines to a pinch of Bollywood spice. The Morning Show with Renuka, 7 a.m. Mondays.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out.
3: वेलकम हमारे दूसरे घंटे में आपका स्वागत. जी हाँ, चल रहा है द मॉर्निंग शो. सुबह 7 बजे से मैं आपके साथ जुड़ी हूँ. एंड माय नेम इज नॉट एंथनी गोंजाल्वेस, रेणुका. ब्यूटीफुल मंडे. एंड यहाँ पर इस समय हम बात करेंगे जर्मन स्टार्टअप आइसार एरोस्पेस की, जिन्होंने इसी वीकेंड पर लॉन्च किया अपना पहला रॉकेट इनटू स्पेस फ्रॉम अ साइट इन आर्कटिक नॉर्वे, ब्रिंगिंग यूरोप क्लोजर टू ऑफरिंग सैटेलाइट फ्लाइट्स फ्रॉम इट्स वेरी ओन सॉइल. अनक्रूड स्पेक्ट्रम रॉकेट, ये था पहला कमर्शियल फ्लाइट टू रीच ऑर्बिट फ्रॉम कॉन्टिनेंटल यूरोप, वेयर सेवरल नेशंस हैव सेड दे वांट टू शेयर अ ग्रोइंग मार्केट फॉर स्पेस मिशंस. उन्होंने कहा वी आर इन ऑर्बिट एंड जस्ट मेड यूरोपियन हिस्ट्री. जी हाँ, इसी पोस्ट के साथ में सोशल मीडिया पर अनाउंस किया गया कि भाई हम पहुंच चुके हैं स्पेस. एंड दिस इवेंट वॉज अ ब्रेक थ्रू फॉर द यूरोपियन लॉन्च इंडस्ट्री, गिविंग द कॉन्टिनेंट बेटर एक्सेस टू स्पेस.